0: रोने
1: एक्शन ले बाबू तू धाप धाप ये तू का हाँ बाबू हाँ बाबू इतना दिखी ना वो नानी तेरे उन नानी तेरे हाँ वो दे ले कर एक बुरी है आगाडी मुझे आगाडी मुझे हाँ हाँ বেশি না পচি না কিন্তু পচে দেখি পথা রে যাওয়া